Thank you.

0: ใจคุณบาบาสังเกตสวาสใจคุณบาบาประเทศของสังเวียนที่ว่าสวยกระด้างไม่เป็นที่สนใจรัสเซียมีประชาชนมีการมีการประชาธิปไตยการก่อสร้างประชาชนพิจารณาเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็ขัดแย้งกันมาที่มุกตามอปอร์คอลชาวต่างก็เดินไปกับรัสเซียบาร์ดินาคอยดีบ้างขัดแย้งกันจากการตัดสินใจที่ทำกันได้ในบริการที่เป็นน้ำสารสับสิทธิ์แอร์ที่ทารายทุ่งเซลล์ปนังสตอกันนั้นจะรับสารสมชีพจากจานกระเจียนเงินมาเพื่อที่อาชญากรคอยดูว่าจะใช้ก่อนไปรู้ก่อนว่าขัดแย้งว่าพอคอยเอ็ดจานกระเจียนเงินมาปีนจานกระคอยดูว่าจะเพื่อที่จานก็จะแตกกันละปุ่ยจินมาแต่ดีก็ทารวยฮะก็เอ็ดเบียร์มาเสียข้อสก็เอ็ดรูปขัดหลังก็เอ็ดจานกจานว่าอาจจะมันก็เอ็ดก็ขายบริษัทก็ดีดูขัดแย้งก็ยังเป็นที่มาอีกนั้นมันเป็นเงินที่จริงแล้วมันฟอกก็รีบไปทารวยก็ทารวยแบบนั้นก็ทารวยใช้ที่มาภาษาอังกฤษวยฮะไปรู้จักจังมาเสียก็วิจารณ์ขัดแย้งมาเสียอาวุธก็รับสนิทกันภาษาอังกฤษก็ไปกับเราในมือจานก็สุขันทารุก็มันดี
1: पानी पर चला का प्रयोग किया गया लगातार देखी अब मुझे जो सबसे बड़ा प्रतिशत सबसे नाम के तो एक सिकुल कहीं चमचम से कहीं और पत्ता पत्ता पत्ता आग से कहीं तो पत्ते देखते हैं मैं तो कान हूँ कि तुम जूझ के तो तुम चमने की तो कोट हूँ कब ना निकलने हो कहते हैं कि मैंने पानी पर सिद्ध भ्रम से बाहर ना निकलने हो मैंने चमचम करना ना हो मैं वो दाग बना दे रहा तो जब मैंने अपना मंडी में लंग गया जब डायरोकन की मैंने डाइन के जब मिक्स टाइम की कटी तो वो ना तो मैंने पेटे में बड़ा पड़ेगी थी तो वो मैंने कटे बजा रहा था उनके जो आगे रात तो उनके मैंने जब लगाई है मैंने मिक्स लगी तो मैंने नाइन बार मारने दे रही और जब टाइम तो मैंने जब पहले नाइन मीटर पहले दे रही तो वो मैंने खराब नहीं है मम्मी करना हुआ है तो मैंने ये लोहे मैंने कुहार बना के मैंने कर्जुन में करा के मैंने प्रथम मैंने पांडर रहा उन्होंने कति मदद सके तो यह मन बिटी बात मनी पाओ आज सुबह जब लाइन को तो बिटी मदद सके तो बहुत कर सके तो हर उन कोई न करे अगली पकड़ सक ना करे आज उन तो पहले लाइन हो मुझे उनका रास्ता के पंडल से पानी पड़ा तो ठीक है ठीक है पर तब तो मैंने सो फिर कतें तो ज्यादा सुन दे क्या और कतें मारता जाता हूँ मैं इसका पहले तो मैं दस बारह पैसा काटी तो का सुन रहा हूँ मैंने हमारे गाँव में मैंने सुना लेकिन पानी मैंने ऐसे सिंह सिंह सिंह सिंह करके तो मैंने मतलब जब मैंने बटी तब तक तरह से तो मैंने रुको में मैंने मारा तो फिर रुको को फिर मैंने धारी लिए तो मैं हमारे बड़का बाबा रही हूँ जब तो बाप देखा मैंने रह बैठा तो बड़का बाबा को तो ज्यादा असर नहीं था ठुठ के बाय तो देखा कि मैं तो कर रहे हो असर पा गया तो उन्होंने मैंने मुझे खा के टेंशन हुई नहीं तो सबको बाप मैंने घीने को वो कोई चक्कर बोलाए कोई मैंने बुता मंडा बोलाए कोई तक बोलाए कोई मैंने और फिर जन जन जन को मैंने पकड़ी आ रहा कोई मैंने पूरे तकिया कोई मैंने आगे से मैंने ऊंचे ऊंचा सब लगा लग मैं कोई पानी से मैंने ऊंचा कराए काम में मैंने कोई इतना हो गया नहीं तो उसे भूख के अस्ते तक आए मैंने तो घरे ना देखो वो तो मैंने करे नहीं सबको कहीं मिल के मैंने गए हो क्या तो आजकल मैंने ठीक है पापा होता कुछ नहीं मैंने रुको मार मैंने उनका माफ कर भक्त नहीं है मार को ना देखे मैंने ये मैंने देखे हूँ एक तो वो हमारे गोत्र अंतर के इंडियन फिल्म में लिए तो टीवी भी सबको फुटा दिया लो धारा ही नल का तो उनका पानी सबको गाड़ी फोड़ दिया तो पानी घूमने घूमने लाया था बोलो बोलो पानी तो वो एक तो देखे हूँ तो यहाँ मैंने कई गाँव वहाँ रुको मैंने लिए तो आप लेके टीवी भी है तो उनके फिर टीवी इंटरनेट सब बुला दे लो टीवी का इसी सब बुल के लिए तो ये तो ये हमारा बीजी बदल हुआ तो गाँव में मैंने कि तुम्हारे यहाँ घास का नहीं है तो वहाँ वो घास का एक बेल में ये लोग आगे को का चेक मिले कि नहीं बीच का मनी है जब घास का चेक पर पर पहुंचे लेके घर आया मैं तो बाद में आके बीच का मनी है कि तो ऊपर घास सही मरे या भक्त से सब ऊपर की ले सकती हो मैंने आगे पाचक मरिया नहीं नहीं पूरे बाद में तो कम कम देखी है तुम पर मैंने बोला था आप लेके तो बेहोश हो गए मैंने पाचक उन्हें छह सात दिनों से तो खाली नहीं वो माल तो मैंने तो जितने रहती तो वो मैंने मैं कहती रहा हूँ।
0: मानसून सक्रिय बिलकुल से गड्ढा खुलवा पहले प्रभावित क्षेत्र तथा सर्वजनता का जोखिम ये बिलकुल से सतर्कता अपनाए राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण चली जुड़ा आज दुर्भाग्य मौसम संध्या के 5 बजे फिर दूसरा दुर्भाग्य मौसम बुलेटिन दिखाई दी जाएगी। तब समय प्रयाग प्राधिक संघ मई 3 दिव्य जय दुर्भाग्य।

0: गरी अन्न गेडादी साग सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खानासँग सँगै दुई वर्षसम्म स्तन पारिता
1: एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। धन्यवाद।

सुनसानी की जो है बड़ा मजा है, नंबर वन सुनसानी जो है पैर पर।

सिद्धार्थ थापाङ केतै उहाँसँग 96,63,600 हो 96,93,93,82,600

Alcohol, I'm

0: स्वस्थ संतान को गर्भावस्था और इसका खाना खाना का संपर्क नियमित रूप में आयरन कैल्सियम खाने की जारी स्वस्थदायी सुरक्षित परिवार
1: कार्यक्रम को साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय बढ़िया ऐसी जनता

Yeah.

0: es la cultura que se ha implicado con ella. Porque en esta parte de la base,
1: विश्वास मात्रा में सही जानकारी पाएगा तो लघु उपचार केंद्र कानपा एक अस्पताल रहेगा आधिकारिक इसमें जाकर आवश्यक जानकारी दीजिएगा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै द्वितीय पूर्णमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र सङ्गठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत गर्दै
2: बाल विवाह कानूनी अपराध हो, यसलाई आजैबाट

0: संध्या सवा छ बजे हमारा संदेश में अपना स्वागत बाया केन्द्र संग मैं कुमार उत्पादित हमारा संदेश बबई राजापुर एफ एम साथी एफ एम राजापुर बबई एफ एम गुलरिया पार्टी रेडियो प्रतिबंध एफ एम कोहलपुर रेडियो खाते मारो चांदी गांव पालिका पाठ्यम से प्रसारण की बात हमारा संदेश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से साउन को इस गति भित्र संपत्ति विवरण पारे पिछाए पांच वर्ष जी पाता फार्मा लंग रेंज पेट्रोलियम बस्ती निरंतर समुदाय से सरकारी प्रहित दवाई नेपाल दस मार्च कटे छठ साधिकरण अपहरण थार लेखक संघ नेपाल का अध्यक्ष में कविता चौधरी मुक्ति स्वागत मर्यादा व आत्मसम्मान जो वास्तविक लोकतंत्र रक्त हरी महानी क्षेत्र आगे कराई पूरा समाचार से
1: साउन बीस गति भित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य भए बाँसकडी नगरपालिका अधिकरणमा बाँसकडी नगरपालिका सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्न जनप्रतिनिधि कर्मचारी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू पनि साउन बीस गति भित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाए अर्जी गर्नु हो। सार्वजनिक सूचनामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा

Thank you.

हैदराबाद भवन का उद्घाटन समारोह में संबोधन करते हुए सीन पटेल ने कहा, वाणिज्य करके लोकतंत्र के बल शब्द को उच्चारण करके राशि मीटियों का व्यवहार में चीर तभी पार्ट विपन्न में जोर दिन बाद लोकतंत्र कलक छाल छाला उन शब्द नहरेगा

समाचार संग हमार संदेश का समय भाई लगे बा हमार संदेश बढ़िया से पहला मुख्य मुख्य संदेश के ग्यारह सवाल बीस प्रतिशत संपत्ति विवरण में पारे बुझाए पांच बड़ी नगर पालिका अधिकरण का उपकारी महानिदेशक दान बहादुर कार्य हरेक नागरिक अपन पेशा और व्यवसाय कर्म का सीखना वातावरण बनना जो वास्तविक लोकतंत्र अभिलक्ष कुमार

Thank you.

Thank you.

एक पटक सेवा करने बहुत आवश्यक दिन हमारा धन्यवाद।

स्वास्थ्य कारण प्रभु से चलित नजारी सन्देश।

ईश्वरी मनोमा रक्त कमी अर्थात रक्त बाधित पर्वा रक्त पेट कराउन लग्न चक्कर कमी हो पहिलं ध्यान दिन समस्या

Thank you.

0: 40% भनेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिसो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो पूर्वाधार एफएमद्वारा सबै हितमा जारी सन्देश।

Thank you.

Sabote nos ha sabido sacar.

0: ఈ డిస్కౌంట్ యోజనా రసం
1: సార్

पता है आपने साल बताई गई जो अभी सीआईएन प्रोसेस बुक पेज और यूट्यूब सीआईएन चैनल का प्रति पसी लाख समझ समाज का आवाज।

0: jsou i výraz rázných pracov, to znamená, že se dávají to vedy uvnomí a píše nábrek Slovenska a uvnomí, to jsou my jsou důzny, CIR, vedy uvnomí, to se znamená, že vám znamená.
1: ऐतिहासिक संस्कृति का धार्मिक महत्व उदिता सारी घर को समर्थन पर्याप्त स्वास्थ्य लगाने हो सके उसे नियमित मर्म संभाल को अभाव सहरीकरण और तोड़फोड़ का कारण धीरे सारे को जीर्ण बंद को यह सारी के सांस्कृतिक संपदा का रूपा संरक्षण करने और सरकार स्थानीय तह और समुदाय

0: 있습니다.
1: 네, 간간히 가시다오.
0: 사실 원하는 것은 사실인가 봐. 사실 원하는 것은 아이들 아시다면 이거 딴데

Yeah.

પ્રતિક્ષણ જેવું ભાગ્યું નીચે રહેશે.

Thank you.

कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनैक मदारी सजिल समस्या परिवार समाधान नाम नाचने समाधान को उपाय तो अच्छा हो रही है।

सिद्धान्त वैज्ञानिक नुवा नम्बर 9 6 वर्ष थिए 13 6 वर्ष थियो।

Δεν έχω υποφέρει να σα σώζω, δεν έχω υποφέρει να σα σώζω.